0: गत मित कोय न लाखे।
1: रब के सेवक को ना पहुँचे,
0: रब के सेवक उचते उचे।
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दे दिन प्रगटाया।
1: एक कीरी में कल रखे,
0: कसम करे लश्कर कोट लाखे।

मरिए देग तेग जग में दो चले राखे आप मुहे और ना दले तुम मम करो सदा प्रतपार तुम साहिब में दा तिहारा।

सगल समगरी तुम रे सूत्र धारी तुम ते हो सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास।

0: कृपा करके जिन्हां नूं भगती का खजाना बख्शिया उन्हां नूं भगती का दान मिल गया और जिन्हां नूं वाहिगुरु ने अपनी भगती का दान दिता है उन्हां दे अंदर फिर शुभ गुणा का भंडारा पैदा हो जाता। कबीर जी रविदास जी जैसे महापुरखों के अंदर समस्त शुभ गुणा का भंडार उत्पन्न हो गया। ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी जैसे महापुरखों के अंदर शुभ गुणा का भंडार पैदा हो गया। जदों भाई गुरदास जी वर्गे महापुरखों भाई सालो जी भाई बहलो जी भाई मांझ जी किन्ने किन्ने नाम रसीए गुरसिख ने साहब ने उन्होंने भगती का दान दिता तो उन्होंने हिरदे शुभ गुणा का भंडार बन गए। इत्थे वचन आया भंडार, भंडार मतलब खजाना। उन्होंने जेडे हिरदे ने अंतःकरण हैं वो फिर शुभ गुणा का भंडारा बन जाते हैं।
1: ज्ञानिया नो सब सच है सच सोझी होई।
0: पातशाह कहते जेडे ज्ञानी हैं उन्होंने फिर सारे विच सच स्वरूप ही नजर आना। एक तो होंगे मेरे वर्गे कहाण वाले ज्ञानी चार किताबा पढ़ के, एक होंगे तत्व ज्ञानी, एक ब्रह्म ज्ञान की अवस्था पुजे हुए। ब्रह्म ज्ञान भी गुरु खालसा जी दो प्रकार का दसिया महापुरखा ने, एक है अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान दूसरा है प्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान। हुण जिहड़ा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है वह तुसीं भी जिन्ने बैठे हो तुहानू सारयां नूं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, पर जिहड़ा अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है वह बाबा बुढ़ा साहब जी जैसे विरले गुरमुखां नूं है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कित्थों पैदा हुंदा? धर्म ग्रंथां चों। गुरबाणी ने सानूं दस्या भी रब है, असीं वेख्या तां नहीं ना हाले, रब दे दर्शन नहीं कीते, परमेश्वर दे स्वरूप दे अनुभव नहीं किया, उसनूं अंदर साक्षात्कार नहीं किया, पर असीं मन्नदे हाँ भी है, तां ही धर्मी है ना। आस्तक किसनूं कहिंदा जिहड़ा रब की होंद नूं मन्नदा? हुण इह परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी तां बहुत ने संसार च जिहड़े रब की होंद नूं मन्नदे हन पर रब नूं वेख्या नहीं हाले। जिन्हां ने परमेश्वर नूं अपने अंदर साक्षात्कार कर लिया उहनूं कहिंदे ने अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਆਵਲਾ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। वो कहें देहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास, वो कहें दे सारा जगत सच्चे दी कोठड़ी सच्चा ये दे विच वरत रहा है, वो ही ये दे विच निवास कर रहा है। उना ज्ञानियां नू सारयां च सच स्वरूप ही नजर आउंदा, ज्ञानियां नू सब सच है, सच सोझी होई उना नू सच दी सोझी हो गई, सच दा ज्ञान हो गया। सच की है? सच अकाल पुरख परमेश्वर दा स्वरूप है। सच की है? असी रोज पढ़ते हाँ

कला तेरे पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पही अकाल की।

हर जग सो हमरी रक्षा करे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

आगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे अर...

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

संग मोहे उदारो सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हराय,

सामर्थ बरख भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम द्रे जन कोट हर जस करत संदन रात हर

गावे काची भीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बाहत सियाणप जमका पहो व्यापै अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कूट पाप दुर्गै नहीं सज्जै छूट सुनाही ऊब पयाल मोह व्यापे माया जाल अमर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन मंदिर नहीं माने हर का नाम जब दुख जाए नानक भुलै सह सुभाए

कौडी संग रथ सा छोड़ झूठ संग मचै जो छटना सो अस्तर कर माने जो होवन सो दूर परान छोड़ जाय तिसका श्रम कर संग सहाई तिस पर हर चंदन लेप उतारे तो हे घर प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पत बिकराल नानक काढ लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक बिचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाहे कश कर शपाया बाहर ज्ञान ध्यान शनान अंतर व्याप लोभ सुमान अंतर अग्न बातन स्वाहगल पात्र कैसे तरा अथाह जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे करके लिह ओढ़ निबहावे कहाँ बुझारत बुझे डोरा निस गये तो समझे पूरा कहाँ बिजन बद गावे गुंग जतन कर तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तुहा उस गमन करतार करुणा में दीन बेनती कर नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाई सो आवे ना चीत जो बैराई तास्यो प्रीत

अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए दुष्ठाकुर को रखमन माहे जय प्रसाद सुगंधतन लामे दुष्को सिमृत परमगत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर दसे ध्याए सदा मनंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरोद सरसना जय प्रसाद रंग रास भोग नानक सदा ध्याय ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख से जय मनाठ पहर ताका जस गावीजय जय प्रसाद तुसब को माने मुक्ता को जस रसन बखान जय प्रसाद तेरो रहत

साठ सात से अध्याय तिसे अध्याय जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करे पुन बहुदान मनाठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद हुआ चार व्यवहारी तिस प्रभु को सासा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी

प्रकाश प्रभु दयात कमल विकास प्रभ सन बसै मन सोए प्रभ दयात मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया भो कशु न किनु लया जित जित लाभो तित लगे हर नाथ नाल किनकै कशु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की आचार्य कथा अष्टपदी साध के संग मुखूजल होत साध संग माल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगट सुगियान साध के संग विजय ब्रह्म रेरा साध संग सबोधन भेरा साध के संग भाय नाम रतन साध के संग एक पर जतन साध की महिमा बरने गौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी साधक संग अगोचर मिलाय साधक संग सदा पर फुलाय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग हुए सबकी रेर साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतुहता वे साध संग अस्तित मन पावे साधक संग माया ते बन साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग वहां पुनीत साध संग किस्यम नहीं बैर साधक संग ना भिंगा पैर साधक संग ना ही गो मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही गो ताप साधक संग तजे सब या व्यापे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साधक संग ना कब हूंता वै साधक संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लह साधु कै संग आजार साह साधक संग बसे थान ऊंचा साधु कै संग महल बहुचा साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै गुरबान साधक संग सब गुरु उदार

भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग बंते बिंसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मात उत्तम होवे भगवंत की टहल करा नित नीत मंदन अरभ विशन प्रीत हर के जन हृदय बसावे नान कैसा भगवती भगवंत को पावे सो

नर्क स्वर्ग फिर फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं, द्रवाय हर दर्गे को कैसे गवाय, आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे, सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मोज ते काश होए तब सो सुख नाही खोए, जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे गो बैरी भी तब लग नेचल नाही जीत, जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छूटे, सहज घटे लक उड़ता वे तृप्त ना।

अष्टपदी संगय दुखन यार जागट है, संगय दुखन जमते नहीं छुटा है, संगय दुखन सुख सब जाए, संगय दुखन अर्क में पाए, संगय दुखन मत होए मलीन, संगय दुखन सो बात हीन, संगय हाथे को रखे ना कोहे, संगय दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग निंदक भीतर है, संत गय दुखन दे मुख पवे, संतन गय दुखन काग जो लवे, संतन गय दुखन सर्व जोन पाए, संत गय दुखन त्रिगत जोन कर माए, संतन गय दुखन तृष्णा में जलय, संत गय दुखन सबको शलय, संत गय दुखन तेज सब जाए, संत गय दुखन नीच नीच आए, संत दुखी गाथाओं को नाहे, नानक संत भावे हुए भिगत पाहे, संत गय निंदक महात ताई, संत गय निंदक ठिकन्ना बाई, संत गय निंदक महात्यारा,

अष्टपदी मानो कीट एक ब्रिथी सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिया रहे अगाए बहुना तृष्णा लागे आए मारे राखे एको वा मानु कह किस नाही हाथ इसका हुक्म भू सुख होए तिसका नाम रा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोहे नानक बिघन न लागे कोए उस्तद मन में कर निरंकार कर मन मेरे सद व्यवहार

सोदत सोदत सोद सिज्या गुर प्रसाद तथ बुझया जब देखो तब सब कुछ भूल नानक सो सुखम सोय स्थूल नह के जन्म न किस मरे आपन चलते आप ही कर आवन जाम दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत रज थाप उथाप अविनाशी नाई किस खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभा बंद सकल संसार द्रे तनमंत प्रभु के सेवक सकल उदान प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल लय कृपार गुर का शब्द जप हे निहाल

राम नाम संतन कर पाया, राम नाम संतन कर पाया, ताज महल्यो मन मोल राम नाम हृदय में तो लावत खेप संते संग चाल व्रत्याग भिखिया जंजाल। धन धन गए सब गोए मुखूजल हर सरगे सोहे, ए बाबार बिरला बाबारे नानक ता के सत बलहारे। चरण साध गए धोए धोए पियर साधु कपना जियो, साध की धूर करो स्नान साध पर जाइये कुरबान। सा सेवा बटभागी पाइय साध संगर कीर्तन गाइय।

नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब

अष्टपदी जब कारे का शना दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन्न समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिहन्न जाप तब हर्ष शोक कहो किसे जब हर्ष शोक कहो किसे व्यापत जब अपने आप पार ब्रह्म था मोह का कि सोवत ब्रह्म अपन खेला भरतीजा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी था बांध मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तरा तब कमन ने डर कमन कत डराय अपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसंत है जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब गौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आपिया चर्जा नानक आपन रूप आप यो परजा जय निर्मल पुरख पुरख पा तोता तय बिन महल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्बान तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तैर शल शेदर लगत कहो कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावत किसे भूकम द्रवताव करण करावन करने हार नान करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलापे प्रवीण ते तहबेद कतेब कह गौचीन जब अपने आप उतार है तो शगन अब शगन कहा विचार है ज्ञापन उचापन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय शल अशेद।

शांतव प्रसाद। चक्र चिहने अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंगर रेख भेख कहु कह ना सकत केह। अचाल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजे कोड़ इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजय। तिरपह महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत तुवै सर्व नाम कथे कवन।

अपिहित हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, पजांग प्रयाशंद नमो सर्वमाने समाप्ति निदाने नमो देव देवे पेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे।

केसरबत्र काल है, केसरबत्र पाल है, केसरबत्र हंता, केसरबत्र गंता, केसरबत्र पेखी, केसरबत्र पेखी, केसरबत्र काज है, केसरबत्र राज है, केसरबत्र सुख है, केसरबत्र पोख है, केसरबत्र तराण है, केसरबत्र प्राण है, केसरबत्र देश है, केसरबत्र पेश है, केसरबत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है,

मन आए। हे श्री राम, मेरिया हर तू मैं ज्योत रखी, ता तू जग में आया, हर ज्योत रखी तुद विच, ता तू जग में आया, जन आ हर आपे माता आपे पिता, जने जियो उपाय जगत दिखाय। गुर

भी अपने आप साजो अपने अर्चनाओ दही कुदरत साजिए कर असन डिठो चाओ दाता करता है आप तो तुझ देवे करे पसाओ तू जानो सबसे दिल ऐसे जिंद खुआ करे असन डिठो चाओ करे असन डिठो चाओ।

लिख लिख पढ़े तेता कड़े बो तीर्थ पवया ते तो लवे बो पे किया देही दुख दिया सोह वे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बो दुख पाया दूजा पाया।

मंद विरती मंद ख्यालात वाले लोगों के हाथ च जो ज्ञान आ जाता फिर यही कुछ होंगे। मंद बुद्धि मंद विचारधारा के लोगों के हाथों च जदों कदे परिवार की वांग डोर आई उन्होंने परिवार खेरू खेरू कर दिते। इस करके इत्थे महाराज जी कहिंदे आ अधिक अहं बुद्ध वादे, पाठ पढ़ के वेद विचार के धर्म ग्रंथां नूं विचार के सारा कुछ करके कहिंदे सगों होर अभिमानी हो जांदे। जिस बूटे नूं फल लगदा उहनूं झुकना चाहीदा, जे झुक नहीं रहा समझो फल नहीं पिया, ते जे फल नहीं पिया महाराज जी कहिंदे प्यारे इन बिद मिलण न जाई, मैं किए कर्म अनेका। प्यारिया ऐसियां विधियां नाल नहीं वाहिगुरु मिलदे, मैंने एक कर्म करके देख ले, हार के हार प्रयो स्वामी के द्वारा है, हार के मालिक के द्वारे ते टैपिया, और एक दात मंगी अदिजै बुद्ध विवेक। वाहिगुरु जी विवेक बुद्ध दियो, सा बुद्ध दिजै जित बिस्तर है ना, वो बुद्धि दियो जिहड़ी तुहाडे पैच रहे थानू विसारे ना, रहाओ विश्राम दे के बचन कर देने। महाराज यह जुगती महाराज जी ने इत्थे वाहिगुरु नूं मिलण दी दस दित्ती है वी अपना आप समर्पण करो महाराज नूं और विवेक बुद्धि दी दात मंगो, इस तों बिना वो रस्ता नहीं मिलदा जिहड़ा वाहिगुरु दा है। मोन पयो कृपाती रहो नगन फिरियो मन माही, कदे मोनी बन गया मूह बंद कर लिया, कदे मैं तां जी भांडे च नहीं सकदा किसे च, हत्थां दे लै के कृपाती हथ नूं ही पात्र भांडा बना लिया, कदे कपड़े ला के जंगलां च तुर गया। पर कहिंदे इहदे नाल की हुंदा, किहड़े जानवर दे कपड़े पाए हुंदे आ, किहड़े जानवर नूं भांडिया च परोस के भोजन मिलदा है, किसे नूं भी नहीं। ते महाराज जी कहिंदे फिर उहनां नूं मिल जे, जे तां मिलदा होगा।

महाराज जी कहते वो दीना दे दुख भंजन वाला वाहिगुरु जिदे उत्ते कृपा करता है उदा मन वाहिगुरु की उपमा वाहिगुरु के कीर्तन के विच रत्या रहिंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु भिज जांदा है बस फिर की है हुण पिछे कुछ नहीं रहिंदा। हुण महाराज जानन महाराज का कम जाने जदों रंगिया ही गया कोई ते पिछे की रह गया जिन्हों रंग ही चढ़ गया। रहाओ दूजा ये दूसरी बार ये शब्द च रहाओ है कई बार कई शब्दों च महाराज साहब जी ने दो बार तीन बार रहाओ शब्द वरते ने सतगुरु की रजा है। हुंजा भुल्लां दी खीमा महाराज मेहरामत करन सानू सब नू अपने रंग दे विच रंग लैण। हुंजा भुल्लां दी खीमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

ही गुरु अर्जुन प्रत्यक्ष हर सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन प्रसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम।

संहारे अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर रखे, मात पिता ज्यों पाला रहाओ। बड़ भागी सतगुर पाया, जिन जमका पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा, जप जीवै से बड़ भागा, हर अमृत बाणी गावै, साधा की धूरी नावै। अपना नाम आपे दिया, प्रभ करण हार रख लिया, हर दर्शन प्राण आधारा, एह पूर्ण बिमल बिचारा, कर कृपा अंतर जामी, दास नानक सरण स्वामी। सोरठ महला पंजवा, गुरपुरै चरनी लाया, हर संग सहाई पाया, जह जाइया तहां सहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सपाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जी कै संग सहाई रहाओ। नारायण प्राण आधारा, हम संत जना रे नारा, पतत पनीत कर लीने, कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सरजी संग रखवाला।

श्रवण गोविंद गुण सुनो अर्गाओ रसना गीत रहाओ कर सार संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत काल ब्याल ज्यो पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल पुन तुहे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जात अवसर बीत सोरठ महला नौवां मन की मन ही माहे रही ना हर भजे न तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नौवां

दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निध गज ग्राह ते छूटा मेहमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन तह टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तै पी उतरह पारा सोरठ महला नौवां प्राणी कौन उपाऊ कर जाते भगत राम की पावै जम को त्रास हर रहाओ कौन कर्म विद्या कहो कैसी धर्म कौन फुन करई कौन नाम गुरजा कै सिमर भव सागर कौतरी कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै और धर्मता कै समनाहन ए बेद बतावै।

तैसे ही ए सुख माया के उर्ज्यो कहां गवार, अजू समझ कछ बिगड़ियो नाहन भजले नाम मरार। कहो नानक निज मत साधन कहो, भाक्यो तोहे पुकार, सोरठ महला नौवा एह जग मीत न देखियो कोई, सकल जगत अपने सुख लागे।

देखियो नर को संग छाड़ सा भागे कहूं कहां या मन बौरे को इन स्यों नेहो लगायो दीना नाद सगल पै पंजन जस्ता को बिसरायो सुहान पूछ ज्यों भयो न सुदो बहुत जतन मैं कीनो।

कहां पयो जो मूंड मुढ़ायो भगवो कीनो भेस रहो साच छाड़ कै झूठा लागयो जन्म आकार तुख होयो कर परपंच उदर निज पोखियो पसके न्याय सोयो राम भजन के गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिकियन संग बौरा नाम रतन बिसरा नरा रहे हो अचेत ना चेते गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरध पछानो भूले सदा परानी सोरठ महला नौवां

राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पहन दे सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो निमाणिया दे मान निताणिया दे ताम निओटिया दी ओढ़ ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे आप जी ने कृपा रहमत कीती है दोनों परिवारां नू मंगलमई समय बख्श कीते हन दर करदे प्रीतवान सच्चे पातशाह जीओ लड़की अनमोल कौर सपुत्री माता रणजीत कौर पिता हरिंदर सिंह अते सच्चे पातशाह जी लड़का गगनदीप सुमन सपुत्र माता हरजीत कौर सुमन पिता विजय कुमार सुमन इस वेले सच्चे पातशाह जी अनमोल कौर अते गगनदीप सुमन दे शुभ आनंद कारज आप दी पावन हजूरी विच होए हन कृपा करनी पातशाह जी समुची सेवा निभाउंदिया होया भुल चुक दी खिमा बख्शना पड़ी सुनी बाणी कीर्तन दा भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सच्चे पातशाह जी इन्हां घड़ियां वास्ते आप जीआं दा लख लख वार शुकराना है आप जीआं ने सच्चे पातशाह सोहणे आनंद कारज दे समय बख्शे सच्चे पातशाह कृपा करनी जी आउण वाले समय विच दोनों ही परिवारां नूं आपसी प्रेम प्यार चढ़दी कला बख्शनी सुभाग जोड़ी दे सच्चे पातशाह जी सीस ते मेरा प्रया हथ रखना ग्रिस्त जीवन में सच्चे पातशाह जी आपसी प्रेम प्यार चढ़दी कला बख्शनी सच्चे पातशाह जी खुशियां खेड़े नाम दियां दातां बख्शनियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां ऐस वेले इस खुशी जे समय ते सच्चे पातशाह जी बेअंत संगतां ने आप दे दर ते हाजरी भरी है सब दी दर हाजरी प्रवान करनी आप जी नू सुंदर पसाके हाजिर कीते आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे लोक परलोज पड़दे कजने बख्शियां खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लावो भोग हराज आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्शिश करो सही प्यारे मेल जिना मिलिया दा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ